हालांकि लोगों ने प्रकाश मेहरा को सलाह दी कि वो अमिताभ बच्चन को एज ए एक्टर नहीं ले, लेकिन प्रकाश मेहरा ने अमिताभ को ही लिया। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। और आपको ये भी बता दें कि ये फिल्म प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी।

प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन ने 6 और ब्लॉकबस्टर मूवीज दी। हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल और शराबी। इन फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया।

इस जोड़ी यानी कि प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जो आखिरी फिल्म थी वो थी जादूगर, लेकिन ये फिल्म पर्दे पर अपना जादू नहीं चला सकी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाने में सबसे बड़ा योगदान प्रकाश मेहरा का है।

0: चुरा के।
1: वक्त तो चला है आपसे इजाजत लेने का दोस्तों, तो संगीता को इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और क्या करें, बातें तो अभी भी बहुत थीं और गाने भी कई सारे आपको सुनवाने थे, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। फिर आपसे मुलाकात होगी, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के अपने हमसब रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और शाह विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई और बाहमी तिजारत के शोबों समेत कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 के बाद से जारी किए गए जात के सर्टिफिकेट की फिर से जांच के अहकाम जारी किए हैं। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के लिए सवालों के जवाब के पर्चों की दो सतह पर मुश्तमिल फिर से जांच का ऐलान किया है। फौज के सरबराह जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को पनाह देना और सरगर्मियां खत्म कर दे। और बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की भारत की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद नीदरलैंड्स के वजीर आजम रोबन जेटेन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और इज्जत मआब शाह विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मिलने जाएंगे। यह दौरा बाहमी रिश्तों से आगे बहुत अहमियत का हामिल है और तवक्को है कि इसके जरिए हाल ही में मुकम्मल हुए भारत यूरोप आजादी तिजारती समझौते के तनाजुर में वसी भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात वजूद में

जाएंगे। इससे कबल वजीर आजम के नेदरलैंड्स पहुंचने पर नेदरलैंड्स के वजीर खारजा ने उनका इस्तकबाल किया। भारतीय बरादरी और नेदरलैंड्स के ग्रुपों ने सकाफती प्रोग्राम और मौसीकी पेश करके उनका खैर मकदम किया। मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों, खित्तों और मजाहिब पर मुश्तमिल भारतीय बरादरी के मेम्बरान ने रिवायती रक्स और मौसीकी पेश की। वजीर आजम मोदी के पहुंचने पर मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से फजा गूंज उठी।

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज और साथ ही 104 एफएम मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। आज सन 2026 मई महीने की 16 तारीख व दिन है शनिवार। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पे उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री संगे बुम्पा सेथिपा, नियंत्रित कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री कामयांग फो और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री एके दास, मुनपो में उद्घोषक श्री थुपतन दाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका यशी पेमा। हम सभी आकाशवाणी सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का तरंग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में पहले आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज दोपहर 2 बजे तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे और

0: स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया।

0: है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
3: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर

0: पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनिए बिनी नरांग के संगीत पर गायिका उपसना मेहता की आवाजों में चंद देव भक्ति गीत।

इस गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना आप यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है विभिन्न प्रेम का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत में आज आप सुनिए अरुण जमदय, जसवा हालम, प्रियंका और साथियों की आवाजों में चंद आधुनिक कोकबोरक गीत।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रदेशी संगीत अभी ही पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। इसमें श्रोताओं, आज आप सुनिए पीएम श्री चेनवी तांग के 9वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा वांगचिन सोमू से एक वार्ता। विषय है स्वस्थ जीवन कैसे बनाए रखे।
1: आकाशवाणी तावांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं वांगचिन सोमू, पीएम श्री चेनवी तावांग कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय स्वस्थ जीवन शैली कैसे बनाए रखिए के ऊपर है। स्वस्थ जीवन शैली मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज के आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक ने जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ गई है। बदलती जीवन शैली, असंतुलित आहार, तनाव, व्यायाम की कमी और गलत आदतों के कारण लोग छोटी उम्र में ही बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है। स्वस्थ जीवन शैली का अर्थ केवल बीमारियों से दूर रहना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना भी है। एक स्वस्थ व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि समाज और देश के लिए भी उपयोगी होता है। संतुलित आहार का महत्व। स्वस्थ जीवन शैली का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार संतुलित आहार है। हमारे शरीर को सही मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज तत्वों का संतुलन होना चाहिए। हरी सब्जियां, फल, दालें, दूध, दही और साबुत अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। वहीं पर जंक फूड, फास्ट फूड और पैकेट वाले भोजन हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इससे मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग और पेट से जुड़ी बीमारियां बढ़ती है। इसीलिए हमें घर का ताजा और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। साथ ही दिन भर में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पीना चाहिए। नियमित व्यायाम और योग। स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत होता है, मांसपेशियां सक्रिय रहती है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। रोज सुबह या शाम को टहलना, दौड़ना, योगासन करना या कोई खेल खेलना बहुत लाभकारी होता है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांति प्रदान करता है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय योग और व्यायाम को दे तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। पर्याप्त नींद का महत्व। स्वस्थ जीवन शैली के लिए पर्याप्त नींद भी आवश्यक है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। आजकल मोबाइल, टीवी, इंटरनेट के कारण लोग देर रात तक जागते रहते हैं, जिससे नींद पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए समय पर

0: सोने और समय पर जागने की आदत डालनी चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए हमें धूम्रपान, शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। ये आदतें न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाती है बल्कि परिवार और समाज पर भी बुरा प्रभाव डालती है। एक स्वस्थ जीवन के लिए अच्छी आदतें अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना आवश्यक है। अंत में यह कहा जा सकता है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाना कोई कठिन कार्य नहीं है। थोड़े से अनुशासन, सही दिनचर्या और सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का सही आनंद ले सकता है। इसीलिए हमें आज से ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य है जीवन का आधार, इसे न करो तुम बेकार। करो योग व्यायाम सब चार, रहोगे निरोगी आनंद होगा निराधार। धन्यवाद।
1: श्रोता, अभी आपने दैनिक कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जैन वितांग के छात्र वांगचिन थोमस से एक वार्ता सुना। विषय था स्वस्थ जीवन कैसे बनाए रखे। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:36 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है महिला पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए सुनते हैं, गुलजार के रचे बोल पर फिल्म जब तक है जान से, नीति मोहन के आवाज में।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म जगदी इंडिया से हेमा सरदेसाई की आवाज में एक गीत सुना। इस गीत के रचयिता थे जयदीप सैनी तथा संगीत दिया था सलीम सुलेमान ने। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम में अंतिम गीत, लुटेरा फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज में। इस गीत के रचयिता अमिताभ भट्टाचार्य तथा संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मीरू में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ और 104.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तरंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत आइए सुनते हैं, सूर्यवंशी फिल्म से अरिजीत सिंह और नीति मोहन के आवाजों में। इस गीत को बोल दिया है रश्मि विराग ने तथा संगीत दिया है जैम एड ने।

रश्मि विराग के गीत पर श्रोतावाई सुनते हैं। कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म राधे श्याम से अरमान मलिक की आवाज में।

0: Άντε!
1: Πριν σε κοιτάξει, περισσότερο από την αγγλική μίδια, Vishal Dadlani और सचिन जिगर की आवाजों में गीत का आनंद लिया। आइए कार्यक्रम को यहीं जारी रखते हुए सुनते हैं तेरे नाल लव हो गया फिल्म से अदीब असलम, मोनाली ठाकुर और प्रिया पंचल की आवाजों में एक गीत। इस गीत के रचयिता मायूरपुरी तथा संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

शताब आपने फिल्म फनी खान से सुनिधि चौहान और दिव्या कुमारी के आवाज में एक गीत सुना। इस गीत के रचयिता इरशाद कामिल तथा संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। फिल्म ये जवानी है दीवानी से विशाल ददलानी और शर्मिली खोलगरे की आवाजों में। इस गीत को रचा है अमिताभ भट्टाचार्य ने तथा संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: श्रोताओ, अभी आप हमें आना ले रहे हैं आकाशवाणी के तवंग केंद्र से मेरे में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ट्ज और साथ 104 एफएम मेगा हर्ट्ज पर।
1: We are controlling transmission.

और नवरज हंस की आवाजों में एक गीत सुना। इस गीत के रचयिता कुमार तथा संगीत दिया था विपिन पतवा ने। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। सचिन जिगर के संगीत पर फिल्म अ जेंटलमैन से विशाल ददलानी और चनिता गांधी की आवाजों में।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में अंतिम गीत। रोचक कोहली के संगीत पर फिल्म वजीर से अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर के आवाजों में।

श्रोताओं, वजीर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कार्यक्रम राग रंग में आज आप सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खान से शहनाई वादन। राग है तोरी और बीम पलासी।

श्रोताओं, भीम पलासी के इस राग के साथ ही शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग अब यहीं पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार 4:45 पर तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

की आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड में अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पना देना और भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए और सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड में अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित किया। हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभा की गर्मजोशी और उत्साह ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वे भारत में किसी उत्सव में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका का प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलेम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से भी बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र

बेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पना देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि यदि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं। सेना प्रमुख की ये टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को चीन से औपचारिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के खिलाफ चेतावनी दी है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने पहले कहा था कि ताइवान को स्वतंत्र घोषित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्वयं को पहले से ही एक संप्रभु राष्ट्र मानते हैं। अमेरिका लंबे समय से ताइवान का समर्थन करता रहा है जिसमें अमेरिकी कानून के अंतर्गत उसे आत्मरक्षा के साधन उपलब्ध कराना भी शामिल है और साथ ही ये चीन के साथ अपने कूटनीतिक संबंध भी बनाए रखता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राज्य में हाल ही में हुए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान हटाए गए नामों को भी इसमें शामिल किए जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में एक नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। नोटिस में CBSE ने कहा है कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती है, जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल 1 आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। पाई गई समस्याओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन 26 से 29 मई के बीच जमा किए जा सकते हैं। भारत के मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेजपील के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार भारत को नशा मुक्त देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप को जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। श्री शाह ने कहा कि सरकार भारत में आने वाले और अवैध रूप से भारत से बाहर जाने वाले मादक पदार्थों की प्रति ग्राम मात्रा पर भी नकेल कसेगी। उन्होंने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के कर्मचारियों को भी बधाई दी। सरकारी सूत्रों के अनुसार कैप्टागन फेनेटिलिन का प्रचलित नाम है, जो एक सिंथेटिक उत्तेजक दवा है जिसे मूल रूप से 1960 के दशक में ध्यान संबंधी विकारों और नार्कोलेप्सी के चिकित्सा उपचार के लिए विकसित किया गया था। इसकी लत लगने की प्रवृत्ति और दुरुपयोग की संभावना के कारण मूल दवा फॉर्मुलेशन को अंततः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोराम आन्या ने शुक्रवार को ईटानगर स्थित लोक भवन में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केती परनायक से मुलाकात की। राज्यपाल ने डॉ. आन्या को भारत सरकार के सर्वोच्च सार्वजनिक नीति विचार मंच नीति आयोग में नियुक्ति पर बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, कम जनसंख्या घनत्व और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता जैसी विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों और अन्य राज्यों के लिए निर्धारित विकास मानकों को

0: अरुणाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों पर समान रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम, मेघालय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में तेज वर्षा हो सकती है। कल अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज बैंकॉक में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मलेशिया की जोड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय जोड़ी ने 19-21, 22-20, 21-16 से जीत हासिल की। फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और केंद्रीय पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 1975 में आज के दिन सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत में शामिल हुआ था। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये दिवस मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से सरल नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसमें रुके हुए पानी को हटाना और जल भंडारण टैंकों का उचित रखरखाव शामिल है। इसके साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय इंदू चुकुम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज शेड्यूल्ड टू होल्ड बायलेटरल टॉक्स विद डच प्राइम मिनिस्टर रॉब चिटन एंड विल कॉल ऑन देयर मैजेस्टीज किंग विलियम अलेक्जेंडर एंड क्वीन मैक्सिमा दिस इवनिंग। द विजिट कैरीज significance beyond bilateral ties and is expected to shape Europe free trade agreement. Earlier, when the Prime Minister arrived in the Netherlands late last night, he was received by the Dutch Foreign Minister. He was accorded a grand welcome through cultural and musical performances by the diaspora and Dutch troops. Members of the Indian community representing different age groups, regions and faiths gathered to welcome him with traditional dance and musical performances. After concluding his visit to the Netherlands, the Prime Minister will travel to Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. Indian Army Chief General Upendra Dwivedi said today that if Pakistan continues to harbour terrorists and operate against India, then they have to decide if they want to be part of geography or history or not. General Dwivedi's remark at the event Sena Samwad in New Delhi came days after the country and the Indian military marked the first anniversary of Operation Sindoor. Indian agencies have achieved the first ever seizure of Captagon drug worth 182 crore rupees through Operation Red Pill. In a social media post, Home Minister Amit Shah shared this information and said that the government is resolved for a drug-free India. He said that the busting of the drug consignment destined for the West Asia and the arrest of a foreign national stand out as shining examples of our commitment to zero tolerance against drugs. Dr. Joram Anya, member Niti Aayog, called on the Governor of Arunachal Pradesh, Lieutenant General K.T. Parnayak, retired at Lok Bhavan, Itanagar on Friday. The Governor congratulated Dr. Anya on her appointment to Niti Aayog, the apex public policy think tank of the Government of India. The Governor highlighted that Arunachal Pradesh has unique challenges due to its difficult terrain, sparse population and rich cultural diversity. He said that development parameters used for the plains and other states should not be applied uniformly to hill states like Arunachal Pradesh. The West Bengal government has ordered re-verification of all cars.

Hindi kajaro kasa nasa.

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ट्ज और 104.5 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तरंग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओ, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आइए पहले सुनते हैं DDC तवांग जिला से प्राप्त एक सूचना। नुंगला उपमंडल के योग्य और अभिषेक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्रीय कल्याण योजना के अंतर्गत सत्र 2026 से 2027 के लिए 10 महीनों हेतु शिक्षकों और सहयोग कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला पद है अध्यापक का, पदों की संख्या है 12, मासिक वेतन 15,000 रुपये, आयु सीमा 20 से 33 वर्ष तथा APST उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट और पात्रता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री तथा दूसरा पद है कुक का, पदों की संख्या है 7, मासिक वेतन 10,000 रुपये, आयु सीमा 20 से 33 वर्ष तथा APST उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट और पात्रता 8वीं पास। आवेदन पत्र 18 मई 2026 से कार्यालय के कार्य समय के दौरान DDSC कार्यालय तवांग से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 मई 2026 को दोपहर 3 बजे तक होगी। निर्धारित तिथि या समय के बाद प्राप्त आवेदन और किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन पत्रों की जांच 25 मई 2026 की दोपहर को की जाएगी। साक्षात्कार के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची 26 मई 2026 को घोषित की जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू की तारीख 27 मई 2026 को तय की गई है। साक्षात्कार का आयोजन नुंगला ADC के चैम्बर में सुबह 10 बजे से किया जाएगा। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषयों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवारों को साक्षात्कार की तिथि पर स्क्रीनिंग समिति के समक्ष सभी आवश्यक प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा जिनके दस्तावेज प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से मेल खाते हों। किसी भी दस्तावेज में विसंगति होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। सूचना समाप्त हुआ। आइए श्रोता, आपको कार्यक्रम जरोखा में हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों से

अवगत करवाते हैं। अब से थोड़ी देर में यानी संध्या के 6:20 पर मनपा कार्यक्रम यदुनेरी में सुनिए ब्रह्मदुंगचुंग अनिगुनपा के अनि उमजे और उनके 8 साथियों द्वारा न्यूंगलिक पेचा का शेष भाग तथा लमालुंगतन नोरवो और साथियों द्वारा शेदन चंडीजिक लामे नेंजुर आज शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर आज शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा शाम 7:32 पर साप्ताहिक कार्यक्रम साझ और आवाज इसके अंतर्गत श्रोतावाज आप सुन पाएंगे कश्मीर की कली फिल्म से एक सांझ और उसी सांझ को मोहम्मद रफी के आवाज में तथा सिलसिला है प्यार का फिल्म से एक सांझ और उसी सांझ को कुमार सानू और अलका याग्निक के आवाजों में शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज आज शाम 7:55 पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमी तराने रात्रि 8 बजे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे सुन पाएंगे रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रेल रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्किन तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 रात्रि 9 बजे तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां आइए अब आपको कल यानी 17 मई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं रोजाना की तरह हमारा सभा आरंभ होगा कल दोपहर 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार कल दोपहर 2:30 पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना कल दोपहर 3 बजे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत 3:30 पर दैनिक कार्यक्रम मेरी बात कल दोपहर 3:33 पर महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग शाम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में कल शाम 6 बजे कार्यक्रम डेरिमसेरा 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा कल शाम 6:20 पर मनपा कार्यक्रम शेदुम नेरिम कल शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर कल शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम महफिले कवाली शाम 7:27 पर कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत इसके अंतर्गत श्रोताओं का लाभ सुन पाएंगे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म बुश द प्राइड ऑफ इंडिया से एक देशभक्ति गीत कल रात्रि 8 बजे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए चंद फरमाइश गीत आनंद ले पाएंगे रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्किन तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 रात्रि 9 बजे तो श्रोता ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम जरूर खा आप यहीं पर समाप्त हुआ ये आकाशवाणी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले, विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में

0: आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास नवाचार आरडीआई निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten. He called on King Willem Alexander and Queen Maxima in The Hague this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, Prime Minister said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis.
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: Highlighting global efforts to strengthen economic resilience, the Prime Minister said, India and the Netherlands are jointly focusing on building robust supply chains. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. Economic Offences Wing, EOW, of Delhi Police has busted a Goods and Services Tax, GST, fraud cartel and has arrested 6 people. Addressing the press conference, Additional Commissioner in EOW, Ravi Kumar Singh, said that the accused were operating fake firms. He informed that accused used 50 fake shell companies for GST returns, fake billing and wrongful input tax credit claims. He said that fake GST transactions worth approximately 128 crore rupees were carried out through these firms. The Central Bureau of Investigation, CBI, today arrested a mastermind connected with the leak of biology questions in the NEET undergraduate 2026 paper leak case. The accused, named Manisha Gurunath Mandare, is a senior botany teacher from Pune, Maharashtra. CBI said that she was involved in the NEET undergraduate 2026 examination process and was appointed as an expert by the National Testing Agency. The investigation agency said that the accused had complete access to the botany and zoology question papers. The Ministry of Education has expressed serious concern over the growing number of out-of-school children in the country, especially in the 14 to 18-year age group. A high-level meeting chaired by School Education and Literacy Secretary Sanjay

0: Weightlifting Championships in Gandhinagar, India's Sanjana has won 3 bronze medals in the women's 77kg category. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। समय संध्या के 7:10 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में श्रोताओं आज आप सुनिए खनुडोवा जंगमो जिला अस्पताल तवांग के मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तेंजिन गिल्सन से एक वार्ता। भेंट करता है दोर्जीडेमा, विषय है ऊंच रक्तचाप।
2: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुन रहे आप सभी श्रोताओं का सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हमारे साथ हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में एक बहुत ही विशेष मेहमान उपस्थित है, खंडोडोवा संगमो जिला अस्पताल तवांग के मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तेंजिन गिल्सन। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे आकाशवाणी तवांग में और हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में हार्दिक स्वागत करती हूँ।
3: बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। तो श्रोताओं, आज हम डॉक्टर साहब के साथ हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के बारे में चर्चा करेंगे, जो हम में से अधिकतर लोग इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप क्या है, इसके कारण क्या होता है।
3: सबसे पहले धन्यवाद मुझे यहाँ मौका देने के लिए कि तवांग वासियों को कि मैं जागरूक कर पाऊँ। हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी, तो बीपी काफी हाई होना हमारे यहाँ पे अपना लोकलिटीज में मुनपा समाज में भी काफी हाई प्रेशर के पेशेंट लोग रहता है। तो हाइपरटेंशन एक मेडिकल डायग्नोसिस है, इसका बहुत सारा गाइडलाइंस रहता है। तो पर्टिकुलरली अपना जैसे कि यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का अपना गाइडलाइन, जीएनसी का गाइडलाइन, ऐसे सिस्टमेटिक मेडिकल जर्नल्स का काफी गाइडलाइन होता है। तो लेटेस्ट में इट हैज बीन अपडेटेड यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का अपना गाइडलाइंस में हाइपरटेंशन को कैसे डिफाइन करता है कि बीपी। तो बीपी में दो चीज होता है, ब्लड प्रेशर जब चेक करता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब 120 और 80 से नीचे है तो उनको हम नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। जब 120 और 120 to 129 सिस्टोलिक बीपी और 80 से नीचे आया उसको हम बोलते हैं इलेवेटेड और इलेवेटेड प्रेशर। के बाद आता है स्टेज वन हाइपरटेंशन। स्टेज वन में आता है 130 से 130 टू 139 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 से 89 डायस्टोलिक प्रेशर। फिर स्टेज टू में आता है मोर देन 140 सिस्टोलिक प्रेशर और 90 के ऊपर जो भी है उसको स्टेज टू हाइपरटेंशन कहता है। तो स्टडीज के ऊपर में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इवन यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन को डिफाइन करते हैं बाय चेकिंग द ब्लड प्रेशर
2: जी। और ऐसी समस्या मनुष्य को कब होते हैं और इसके कारण क्या होता है डॉक्टर साहब?
3: हाइपरटेंशन एक ऐसा चीज है जो बच्चों में भी दिखाई दे सकता है और बड़ों और बुजुर्ग में भी दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है कि हाइपरटेंशन को दो प्रकार में डिवाइड करता है, जैसे कि प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है एंड देयर विल बी सेकेंडरी हाइपरटेंशन। यानी कि प्राइमरी हाइपरटेंशन कब कहता है जो उनका कोई दूसरे बीमार की वजह से उसका प्रेशर हाई नहीं।
2: अच्छा।
3: तो उसको कहता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। जो जनरली आपका जेनेटिक्स में अपना देखा गया है कि अगर माँ पिताजी या उनमें से कोई भी एक हाइपरटेंशन रहता है, बीपी हाई रहता है। अच्छा। तो उनका बेटा या उनके बच्चों में भी प्रेशर हाई का संभावना रहता है। फिर होता है एक सबसे कॉमन कारण है आजकल के जमाने में रहन सहन का ओबेसिटी, सिडेंटरी लाइफ स्टाइल, जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स ओवर वेट या ओबेसिटी के कारण वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज जो आज हमारे लिए जो हाइपरटेंशन का कॉज है। वन इवन कहता है कि इवन द 9 billion पीपल आर सफरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड हाइपरटेंशन के वजह से। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिडेंटरी लाइफ स्टाइल जो ओबेसिटी कराता है। ये अभी जैसे हो गया आपको मैंने बताया जेनेटिक्स हो गया, फिर एज, एज इज वेरी कॉमन। तो हायर द एज यानी कि बुजुर्गों में बीपी हाई होने का संभावना ज्यादा रहता है।
2: अच्छा, अच्छा।
3: तो तीन हो गया और रेसेस, रेस यानी कि ब्लैक पीपल में हाइपरटेंशन का ज्यादा रहता है। फिर खान पान में जो ज्यादा नमक का सेवन करता है जिनका एक्सरसाइज कम है, तो इन्होंने में हम लोग ने देखा है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन यानी कि

0: पल्मोनरी हाइपरटेंशन काफी होता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन विल हैव इसका अपना कारण बहुत सारा है, जैसे कि कशिंग सिंड्रोम हो गया, हाइपरलाइड्रोस्टेनोजेकोन सिंड्रोम हो गया, इवन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, तो ये और किडनी खराब होने का कारण, ये सब बीपी हाई कराता है, दैट इज लाइक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सो यहाँ पे हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे एसेंशियल हाइपरटेंशन, ताकि हम लोग उनको उसके बारे में प्रिवेंट कर पाए।
1: डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि बच्चों में तो हाइपरटेंशन होते ही नहीं है, लेकिन होते हैं, है ना। और साथ साथ जो एडल्ट से हम बड़े लोग हैं, हमें भी अगर जब हाई बीपी होते हैं तो इसके कारण बहुत ही ज्यादा है, हमारे खान पान पे तो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और साथ साथ किसी को अगर मोटापे का समस्या है तो भी संभावना है, किसी को व्यायाम की कमी होती है, तो किसी की जेनेटिक्स होते हैं, उनके माता पिता को अगर हाइपरटेंशन है तो बच्चों में भी होने की बहुत ही बड़ा संभावना है, है ना। और साथ साथ डॉक्टर साहब, अब हमें कैसे पता चले कि हमें या किसी और को हाइपरटेंशन है, तो लक्षण क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होगा?
0: जनरली हम लोग देखा जाए कि हाइपरटेंशन के पेशेंट को, मरीजों को भी जब बीपी काफी हाई रहते वक्त भी उनको कुछ होता नहीं, तो इस वजह से उन्हें कोई सिम्टम्स या साइंस नहीं होता है।
1: अच्छा,
0: तो वो जनरली जब आता है तो काफी टाइम होता है, लेट हो गया, तो जब आया कि कैजुअलिटी यानी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया कि वो स्ट्रोक होके आया तब पता चल रहा है, किसी का किडनी खराब हो गया तब पता चल रहा है कि प्रेशर हाई होके इस वजह से। तो कहा जाता है कि एवरी नॉर्मल पर्सन, हर नॉर्मल पर्सन को साल में एक बार कम से कम अपना बीपी की जांच करना चाहिए।
1: जी, जी।
0: और जो जो पेशेंट है, जैसे कि डायबिटिक है, किडनी जिसका खराब है, और जिसको हार्ट डिजीजेस है, अन्य और कारणों की वजह से, उन लोगों को रेगुलरली बीपी चेक कराता रहना, क्योंकि उनमें साइन सिम्टम्स ज्यादा रहता नहीं। और जनरली उनको हम एडवाइस कर सकते हैं जो मोटापा का शिकार है, जो ये ओवरवेट है या मोटापा है, उनको तो, और डायबिटीज है, उनको तो बीपी जरूर चेक करना चाहिए।
1: और डॉक्टर साहब, इसकी प्रिवेंशन किस तरह से करनी चाहिए, कि रोकथाम करने के तरीका क्या क्या होता है, किस तरह से करनी चाहिए कि हम उच्च रक्तचाप समस्या का शिकार बने ही ना?
0: उसमें होता है कि हेल्थी लाइफस्टाइल, तो जिनको हम इवन हाइपरटेंशन है, जिसको बीपी हाई रहता है, उनको भी हम एडवाइस करते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज में यू कैन डू एनी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, डायनेमिक एक्सरसाइज, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करते हुए मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, ये माइंडफुलनेस, ये सबको प्रैक्टिस करना होगा। और दूसरा है कि आजकल कहते हैं डैश डाइट, डायटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी कि डैश डाइट, जिसमें हम लोग नमक कम खा रहा है। WHO का गाइडलाइन में कहता है कि आवर रिकमेंडेड डायटरी अलाउंसेस है 2300 मिलीग्राम ऑफ सोडियम इनटेक। तो सोडियम इज वन ऑफ द कल्प्रिट, जो सोडियम काफी ज्यादा कंज्यूम करता है नमक, तो उन्होंने देखा है, तो 2300 मिलीग्राम पर डे इज द डायटरी रिकमेंडेड डायटरी अलाउंस। और जिनको हाइपरटेंशन है, उनको कहा जाता है कि 1500 मिलीग्राम से ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए नमक का। उसका डैश डाइट में आपका आता है नट्स और लो फैट डायरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री मीट, उसके बाद ज्यादा हम लोग को फाइबर्स, ये सब कंजम्पशन करना चाहिए। तो इसको कहता है डायटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन और रेगुलर एक्सरसाइज। और अगर उनका ये अल्कोहल का कंज्यूम करता है, तो अल्कोहल को काफी डिक्रीज करना चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए। अगर करता नहीं है तो वेरी गुड है, लेकिन अगर करते हैं तो उसको मॉडरेट अमाउंट में, तो दिस विल हेल्प मतलब हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखने में।
1: जी डॉक्टर साहब, हम आशा करते हैं कि आपने जिस तरह से रोकथाम लगाने की तरीका बताए हैं, हमारे श्रोता उसे जरूर आजमाएं। लेकिन किसी को अगर हाइपरटेंशन हो जाते हैं, किसी का उच्च रक्तचाप है, तो उसको आगे जाकर शरीर में कोई और समस्या आ सकते हैं। हालांकि आपने कुछ कुछ समस्याओं के बारे में हमें पहले ही बता ही दिए हैं, तो उसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं?
0: इसको कहते हैं साइलेंट किलर। सडनली अगर बीपी काफी हाई हो गया, तो हाइपरटेंशन इमरजेंसीज में, तो कैजुअलिटी में लोग आते हैं, जब उनको सर बहुत दर्द हो रहा है या ऑर्गन डैमेज हो गया, तो जनरली तो उनको तो आना ही होता, आ ही जाता है कैजुअलिटी में। बाकी जो पेशेंट्स होता है जो बीपी हाई रखता है, दवाई नहीं लेता है, या फिर अपना लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया है, तो पैथोजेनेसिस, इसको साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है कि धीरे धीरे ऑर्गेन को डैमेज करता है, तो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा रहता है, जैसे कि पेशेंट को कभी भी इस्केमिक हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट अटैक होने का संभावना रहता है।
1: जी, जी।
0: फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो खून गाढ़ा होने के वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब होने का चांसेस होते हैं कि अपना नस बंद होने का, जहां से हमारा ये शरीर में आर्टरी ये सब ब्लॉक होने का चांसेस रहता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम कहते हैं। फिर स्ट्रोक होता है, जो हमारे यहाँ तावांग में भी काफी देखा जाता है कि पेशेंट बीपी का

0: कंट्रोल नहीं रखता है और सडनली बीपी हाई हो जाता है। फिर देखता है कि इधर इस्चेमिक स्ट्रोक भी दो प्रकार का होता है, एक सर पे ब्लीडिंग होने का वजह से या तो खून गाढ़ा होने की वजह से तो ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रहे, और एक मस्तिष्क का यानी कि ब्रेन का कोई पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से स्ट्रोक होता है। तो दोनों हाइपरटेंशन में होता है, और हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ज्यादा इस्चेमिक स्ट्रोक देखने को ज्यादा मिलता है। किडनी डिजीज जो हमारे यहाँ पे है वो भी एक बहुत ज्यादा देखा जाता है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन ओनली। बीपी हाई रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है तो किडनी भी डैमेज हो जाता है। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जिसको कहते हैं, आंख दिखना भी बंद हो जाता है, रेटिना डैमेज हो जाता है और हमेशा वो ब्लाइंडनेस का शिकार भी रहता है। तो बीपी को हम कहते हैं, हाइपरटेंशन को कहते हैं कि साइलेंट किलर रहता है,
1: जिसका रक्तचाप सही नहीं है, उसे शरीर में कोई और समस्या पैदा करने की बहुत ही ज्यादा संभावना है।
0: जी जी जी।
1: और डॉक्टर साहब, हम विशेष रूप से हमारे तवंग के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करें तो हम हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको हाइपरटेंशन है, तो क्या यहाँ के लोगों में खान पान सही नहीं होने के कारण ही होते हैं या फिर हाई अल्टीट्यूड का एक अलग सा ये समस्या होते हैं?
0: हाई अल्टीट्यूड प्रेशर को डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अपना ह्यूमन बीइंग का अपना जो प्रेशर्स रहते हैं ऑन्कोटिक हो वास्कुलर ऑन्कोटिक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स में डेफिनेटली वो करता है। लेकिन जो पेशेंट यहीं रहता है तो वो क्या हो जाता है कि एक्लामेटाइज हो जाता है। तो यहाँ पे जो ज्यादा हम लोग हाइपरटेंशन देखता है तो वो तो उस कारण से है कि अनहेल्थी लाइफस्टाइल हो गया। तो वेट ओबेसिटी का कारण बहुत कॉमन है, यानी कि ओवरवेट है। क्योंकि हमारे यहाँ पे मिसनॉमर रहता है कि अगर आदमी मोटा है तो उसको हेल्दी कहता है, यानी कि एक्चुअली तो हेल्दी उसको कहेंगे कि जिसका बीएमआई बासल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो इसका 19 से 25 के बीच है। तो 25 से ऊपर है तो ऑब्वियसली ओवरवेट है, और 30 के ऊपर है तो ऑटोमेटिकली इट्स कॉल्ड ओबेसिटी, तो ओबेसिटी का नाम आ जाता है। तो इससे क्या होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, कार्डियोमेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होता है। तो इस प्रकार से हाइपरटेंशन तो एक हमारा अनहेल्थी लाइफस्टाइल ही को देखा गया है हमारा अपना जो रेगुलर क्लिनिकल प्रैक्टिस में।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, और आज जब आप साक्षात हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आ गए हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे आज ही जवाब प्राप्त करनी है, और हमारे कुछ कुछ सवाल ऐसे भी हैं कि हम हमारे आसपास के लोगों से सुनते हैं, तो उनमें से क्या है कि अगर किसी को उच्च रक्तचाप है, बीपी है, तो वो दवाइयाँ भी ले रहे हैं, लेकिन क्या वो दवाइयाँ सारे जिंदगी लेने पड़ते हैं या फिर दवाइयाँ के जरिए उच्च रक्तचाप की समस्या को समय पर ठीक भी कर देते हैं या फिर उसे नियंत्रित कर देते हैं, ठीक नहीं होते हैं?
0: जनरली अगर पहले हम लोग एडवाइस करता है कि लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, यानी कि डाइट यानी कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, उनका खान पान में चेंजेस लाना, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट को कम कराना, एक अपना एक हाइट के हिसाब से जो वेट होना है उस पे लेके आना, उसके बावजूद भी अगर नहीं रहता है तो ऑटोमेटिकली उनको दवाई एडवाइस किया जाता। तो ड्रग्स में तो काफी सारा दवाइयां अवेलेबल है, तो अगर दवाई कंज्यूम करता है तो उसके बाद भी एक मिसनोमर रहता है कि हम कभी दवाई नहीं छोड़ पाएंगे। तो दवाई भी अगर एक स्टेज में रहता है कि एक साल कहता है अप टू डेट गाइडलाइंस भी कि एक साल से आप दवाई ले रहे हो और बीपी इज अंडर कंट्रोल, क्योंकि हमने काफी देखा है कि बीपी खा रहा है, जो हमारे यहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि बीपी दवाई खा रहा है, कहाँ खा रहा है, कितने साल से खा रहा है, 5 साल से, लेकिन बीपी देख रहे 170/100 है, यानी कि वो दवाई खाने के बावजूद भी उसको फायदा नहीं हो रहा है। जब अगर बीपी का दवाई खा रहे हो तो ऐसा एक डोजेस में लेना होगा रेगुलर चेकअप से कि वो टारगेट बीपी यानी कि 130/70 के नीचे अगर हमको रखना होगा, ताकि एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग का होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर पाए। वरना ये क्या होगा कि अचानक से कि स्ट्रोक होने का संभावना बढ़ जाता है, किडनी खराब होने का जो मैं आगे कॉम्प्लिकेशंस बता चुका हूँ वो होने का संभावना रहता है। तो दवाई को अगर लेते वक्त तो रेगुलर चेकअप भी करना चाहिए कि बीपी कंट्रोल में है कि नहीं, क्योंकि ड्रग्स को चेंज करना होता है, वंस द ड्रग्स रीचेस द मैक्सिमम उनका डोजेस में आ गया तो दवाइयों को भी चेंज करना होता है। सो देखा जाता है कि दवाई और हेल्थी लाइफस्टाइल, जैसे कि हेल्थी लाइफस्टाइल में एक नमक कम कराया, फिर खान पान में चेंज आ गया, तो इसमें देखा है कि उनका बीपी काफी कम हो जाएगा और नॉर्मल बीपी में रहना चाहिए उसको।
1: जब दवाइयां लेते हैं तो उस समय आपने जिस तरह से बताया कि खान पान का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर साहब, अभी यहाँ पे एक विशेष सवाल है कि क्या जो महिलाएं होते हैं रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं उनको क्या अगर उच्च रक्तचाप होने से ज्यादा असर उनको हो सकते हैं?
0: जनरली अब जैसे था कि एसेंशियल हाइपरटेंशन का कुछ कारण में जैसे मैंने बताया कि रेस में ब्लैक पीपल में ज्यादा रहता है, फिर जेनेटिक्स का भी बात हुआ है, फिर अनहेल्थी लाइफस्टाइल का, ओबेसिटी का, तो उसी प्रकार

0: एक जो बताना भूल गया है कि जैसे कि फीमेल लेडी जो प्रेग्नेंट वक्त बीपी हाई हो जाता है, जैसे उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, तो उनको तो फ्यूचर्स में जाके बीपी रेगुलर चेकअप करना होता है क्योंकि वो फिर से हाइपरटेंशन हो ही जाता है। तो आप जब बतायो कि रिप्रोडक्टिव और कुछ दवाइयों जैसे कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन का बात आया है, तो ड्रग्स कोई कोई दवाई भी बीपी हाई कराता रहता है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव एज में जो फीमेल है मैरिड वुमेन्स है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है, तो हाई इस्ट्रोजन में जो ले रहा है उनका बीपी काफी हाई रहता है, बीपी हाई, तो उनको अपना गायनेकोलॉजिस्ट से अकॉर्डिंगली कंसिडर करके उनका ओसीपी यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को भी मॉडिफाई करना होता है, क्योंकि हायर द एस्ट्रोजन द बीपी हायर रहेगा, और अदरवाइज तो जल्दी मेल एंड फीमेल द इक्वालिटी रहता है।
1: जी, और डॉक्टर साहब आजकल एक डिजिटल ब्लड प्रेशर जांचने का मशीन होता है, वो हर किसी के पास मैंने देखा है, वो अपने आप से बीपी जांचने लगते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? और जो प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स द्वारा उपयोग करने वाले जो बीपी मशीन होता है बीपी जांचने का, तो क्या फर्क है उन दोनों के बीच में?
0: अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का गाइडलाइन है, तो नाउडेज तो हमारा ये जो बीपी जो आप बता रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मशीन,
1: जी जी,
0: दैट इज ऑसिलेटोमेट्रिक बीपी मशीन बोलता है, जिसमें हम लोग को स्टेथोस्कोप का जरूरत नहीं पड़ता है।
1: अच्छा।
0: तो दैट इज रिकमेंडेड ओनली, वो सही तरीका है, लेकिन उसको लेने का तरीका को सबको आना चाहिए। तो हम लोग तो खास करके ये भी कहा जाता है कि होम बीपी मॉनिटरिंग एंड ऑफिस बीपी मॉनिटरिंग, ऑफिस बीपी मॉनिटरिंग यानी डॉक्टर के पास गया, उनके क्लिनिक्स में आपने या ओपीडी में देखा है बीपी, और पेशेंट खुद भी मॉनिटर कर रहा है, और एक तरीका होता है एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग। तो बीपी मॉनिटरिंग का तीन प्रकार का तरीका होता है। तो एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग में एक मशीन रहता है जो फिजिबल ने वेरी नॉट कॉमन 24 आवर्स बीपी चेक करके पता करता है कि हाइपरटेंशन है कि नहीं, क्योंकि हाइपरटेंशन में भी दो टाइप का होता है, एक व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलता है, एक मार्क्स हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन का जो मरीज होता है वो जब डॉक्टर्स को मिलता है तभी बीपी हाई रहता है, घर में वो नॉर्मल रहता है। फिर एक होता है कि डॉक्टर्स के पास आता है वो हमेशा नॉर्मल रहता है, लेकिन जब वो जाके घर पे चेक करता है तो हाई रहता है, उसको बोलते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन। तो ये होम बीपी मॉनिटरिंग हेल्प करता है।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: लेकिन पेशेंट को कैसे करना होता है ये बीपी मॉनिटरिंग, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वैलिडेटेड होना है, यानी कि एक अच्छा कंपनी जिसको एक हमारा जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ गाइडलाइंस होगी, हाइपरटेंशन गाइडलाइंस का जो सोसाइटी हो गया या अमेरिकन, वो वैलिडेट करता है कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अच्छा है जो बीपी मॉनिटर कर सकता है। तो देयर आर डिफरेंट कंपनीज, तो उनको वैलिडेटेड मिला होता है कि ये सर्टिफाइड किया होता है कि ये मशीन ठीक है, इस प्रकार का मशीन को हम यूज करेंगे तो सही रहता है। अब यूज करने के तरीका में क्या होता है कि घर पे भी आप जब करोगे, एक बार बीपी देखा 170 आया, दूसरा बार देखते 160 आता है, तो ये आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो उसमें क्या करता है कि इनको जो पेशेंट है उसको सुबह शाम दो बार बीपी देखना होता है, तो दो बार बीपी देखेंगे, सुबह भी देखेंगे शाम के वक्त भी देखेंगे, क्योंकि डायूरियल वेरिएशन भी रहता है, क्योंकि जो कुदरत का जो है हमारा डायूरियल सुबह और शाम को भी बीपी के डिफरेंसेस रहता है, तो उनको सुबह भी मेजर करना है शाम को भी मेजर करना है, और दो बार मेजर करना है, और दोनों बार एक एक मिनट का इंटरवल रहना है, और मेजर करते वक्त बात नहीं करना चाहिए, वो एकदम सिंपल सा चेयर में रहना चाहिए, उनका पैर नहीं झूलना चाहिए, पैर फ्लैट ग्राउंड में रहना चाहिए, उनका आर्म स्विंग नहीं करना चाहिए, आर्म एक उनका टेबल में रहना चाहिए, और जो बीपी मशीन है उनका राइट एट्रियम यानी कि हार्ट के लेवल में रहना चाहिए, जो मिड ऑफ द स्टर्नम रहेगा छाती के बीच में उनका रहना चाहिए मशीन को, और मशीन को आप एक बार देखेंगे एक मिनट के बाद फिर देखेंगे, फिर एवरेज लेंगे उसका, उसका एवरेज लेना होता है, फिर उसके बाद बीपी दिखने से पहले वो अपना अगर पेशाब लग रहे तो उनको ब्लैडर को पहले एम्प्टी कर लेना चाहिए, और दूसरा चीज है कि आधे घंटे पहले अगर वो स्मोकर है तो स्मोकिंग नहीं किया होना चाहिए, चाय कॉफी ऐसा कुछ भी नहीं लेना चाहिए जिससे बीपी हाई रहता है। तो आधा घंटा जैसे वो एकदम नॉर्मली रहा, एकदम रेस्ट किया, और ऐसा करके वो एवरेज एक डॉक्टर्स को मिलने जाने से पहले 7 दिन का बीपी एवरेज लेके आना, तो पता चलता है कि होम बीपी मॉनिटरिंग में सही में बीपी हाई रहता है कि लो। तो जनरली उसका गाइडलाइन में कहता है कि 135/85 होम बीपी मॉनिटरिंग में उससे ज्यादा रहता है तो पेशेंट इज हाइपरटेंसिव, ये कहा जाता है। और करेक्ट साइज ऑफ कफ, कफ यानी कि बीपी कफ जो होता है जो हम आर्म्स में बांधते हैं उसको करेक्ट साइज लेना होता है, अगर छोटा पड़ गया तो वो भी गलत बीपी ओवर रीडिंग करेंगे, और कम होगा तो कफ का 80% अगर कवर नहीं होता है तो बीपी अंडर रीडिंग हो जाएगा, तो करेक्ट साइज ऑफ कफ भी यूज करना होता है। तो अगर इसको वैलिडेटेड है, हमारा मेडिकल जर्नल्स लोग जो सोसाइटीज ऑफ हाइपरटेंशन है वो एडवाइस करता है कि होम बीपी मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इवन हॉस्पिटल में भी आजकल एडवाइस करते हैं ऑसिलोमेट्रिक बिना स्पिग्मोमीटर जिसमें स्टेथोस्कोप का जरूरत नहीं पड़े उसमें हम लोग यूज कर सकता है,
1: लेकिन तरीका से ही जानना करेक्ट मेथड।

0: टॉप बीपी मॉनिटरिंग और करेक्ट डिवाइस वो करना यूज करना
1: चाहिए। जी जी, तो डॉक्टर साहब आप जब हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में साक्षात आए हैं तो आपसे चर्चा करने के लिए तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा विषय है, लेकिन आज के ये जो कार्यक्रम है इसकी समय समाप्त होने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आज आपने अपने कीमती समय निकाल कर हमारे आकाशवाणी तवांग के कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं को हाइपरटेंशन के बारे में और इसकी रोकथाम, इसकी इलाज, इसके लक्षण, इस बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: थैंक यू, शुक्रिया। श्रोताओं को मैं ये कहना चाहूंगा, हाइपरटेंशन एक कंट्रोल कर सकते हैं, दवाइयां हैं, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन करके बीपी को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब आप पैरालाइज हो जाते हो स्ट्रोक होके, देन आप बेड रिडन हो जाते हो, तो ऐसा देखा जा रहा है हार्ट अटैक होके आ रहा है पेशेंट्स, तो ये सब चीज वी कैन प्रिवेंट इट। तो प्रिवेंशन के लिए आप समय पे हॉस्पिटल आइए, हम लोग से कंसल्ट करिए, तो हम आपको अपना एडवाइस और प्रॉपर एडवाइस देते हुए और साथ में ड्रग्स यानी कि दवाइयों को मॉडिफाई करके अकॉर्डिंगली आपको राइट आप जो दवाई खाना है आपको हम एडवाइस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: श्रोता, अभी आपने हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा के अंतर्गत खंड डोवो जंगमो जिला अस्पताल तवांग के मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तेंजिन गेल्सन से एक वार्ता सुना। विषय था उच्च रक्तचाप, भेंट करता थे दर्जी ड्रेमा। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:31 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, पेश है साप्ताहिक कार्यक्रम सांझ और आवाज। इसमें श्रोता पहले आज आप सुनिए कश्मीर की कली फिल्म से एक सांझ।

श्रोता, अभी आपने फिल्म कश्मीर की गली से एक सांस सुना। आइए अब इसी सांस को सुनते हैं मोहम्मद रफी के आवाज में।

श्रोता, अभी आपने फिल्म सिलसिला है प्यार का से एक सांस सुना। आइए अभी इसी सांस को सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही सप्ताह कार्यक्रम सांझ रवल से ही पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। इस समय संध्या के साथ बजकर 45 मिनट होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के टनगढ़ केंद्र से अनुप्रसारित प्रदेशिक समाचार 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रई नोमी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज स्वर्गीय डॉक्टर बेंगिया तोलुम को याजल स्थित उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम सम्मान दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य के एक अत्यंत सम्मानित व्यक्तित्व और महान स्वदेशी नेता बताया। उन्होंने कहा कि समाज के प्रति उनका अमूल्य योगदान तथा स्वदेशी पहचान के संरक्षण में उनकी भूमिका को हमेशा गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा। राज्यपाल केती परनायक ने आज ईटानगर स्थित लोक भवन में लोक भवन की कर्मचारी मीनाती दाकुया को गवर्नर साइटेशन तथा 20,000 रुपए की नगद राशि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान लोक भवन परिसर में एक बड़ी दुर्घटना को टालने में उनकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के लिए दिया गया। गौरतलब है कि 8 मई 2026 को शाम के लगभग 7:30 बजे श्रीमती मीनाती दाकुया ने बी सेक्टर में एक बिजली के खंभे से आग लगते हुए देखा। उन्होंने तुरंत विद्युत विभाग को सूचित किया और लगातार संपर्क बनाए रखते हुए ये सुनिश्चित किया कि बिना देरी के बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाए। उनकी तत्परता और सूझबूझ से एक बड़ी अग्नि दुर्घटना होने से बच गई। वेस्ट सियांग जिले के आलो में आज से 9वीं हंगपंग दादा मेमोरियल ट्रॉफी के तहत राज्य स्तरीय अंडर 16 फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। ये प्रतियोगिता हर वर्ष विधानसभा क्षेत्र, जिला और राज्य स्तर पर हंगपंग दादा की स्मृति में आयोजित की जाती है। ये राज्य सरकार का एक प्रमुख खेल आयोजन है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना है। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता राज्य स्तर के मुकाबलों में भाग लेते हैं। उद्घाटन मैच में बालक वर्ग में वेस्ट सियांग और शियोमी के बीच मुकाबला हुआ और मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। एक अन्य मैच में लोंगडिंग ने दिबांग वैली को 3-0 से हराया, वहीं सियांग ने ईस्ट सियांग को 3-0 से पराजित किया। बालिका वर्ग में लोंगडिंग और करादादी के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ, वहीं नामसाई ने सियांग को 2-1 से हराया। ये प्रतियोगिता इस महीने की 27 तारीख तक जारी रहेगी। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बियोराम वागे ने आज पाके केसांग जिले के सेजुसा में रबर उत्पादक सोसाइटी कार्यालय सह प्रशिक्षण हॉल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सेजुसा में रबर की खेती की अपार संभावनाएं हैं और उचित प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन के माध्यम से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। इससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय निसाम नाबम की स्मृति में एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। वे एक दूरदर्शी प्रगतिशील किसान थे जिन्होंने वर्ष 2012 में सेजुसा में रबर की खेती की शुरुआत की। राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री न्यातो दुकम ने आज पासीघाट के इंडस्ट्रियल एस्टेट 2 माइल सोमील के पास तुलांग प्योर एडिबल ऑयल फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 38 पासीघाट ईस्ट के विधायक तापी दारांग, 37 पासीघाट वेस्ट के विधायक निनोंग इरिंग तथा 39 मेबो के विधायक ओकेन तायंग भी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री न्यातो दुकम ने कहा कि सपनों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को निरंतर और दृढ़ रहना चाहिए। उन्होंने पायलट से उद्यमी बने मोहंतो पांगिंग की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने विजन को साकार कर दिखाया है। इस अवसर पर ईस्ट सियांग के 3 स्थानीय विधायकों ने संयुक्त रूप से स्थानीय उत्पादों के उपयोग के महत्व पर जोर दिया। जिले के भीतर इस फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए विधायकों ने मोहंतो पांगिंग की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे आने वाले दिनों में स्थानीय किसानों को काफी लाभ मिलेगा। अग्निवीर भर्ती संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2027 में भर्ती के लिए आगामी 1 जून 2026 से 12 जून 2026 तक क्षेत्र के विभिन्न निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के सभी पात्र अभ्यर्थी जिन्होंने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण किया है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आधिकारिक भर्ती वेबसाइट joinindianarmy.nic.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करे तथा उसमें लेख के सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन कर ले। परीक्षा केंद्र में प्रवेश केवल वैध प्रवेश पत्र और मूल फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। अधिक

0: registered for the Agnivir recruitment process are advised to download their admit cards from the official recruitment website, that is www.joinedindianarmy.nic.in, within the stipulated timeline and carefully verify the details mentioned therein. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित रीजनल न्यूज। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:55 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, पेश है देशभक्ति गीत का कार्यक्रम ग्वामे तराने। कार्यक्रम ग्वामे तराने में आज आप सुनिए फिल्म दिल जले से कुमार सानू और आदित्य नारायण की आवाजों में एक देशभक्ति गीत।

श्रोता, अभी आपने देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमे तराने में फिल्म दिल जली से एक देशभक्ति गीत सुना। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। तो आए श्रोता, कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं संगम फिल्म से मुकेश के आवास में। इस गीत के रचयिता हर्षरत जयपुरी तथा संगीत दिया है शंकर जय किशन ने। गीत की फरमाइश की है वरिन खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोरा ने।

समीर की रचे बोल पर आए श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बेटा से अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण की आवाजों में। इस गीत की फरमाइश की है तोरवल नौन शहर पंजाब से गगनदीप ठंडी, तृप्ता कुमारी ठंडी, डॉक्टर प्रियंका ठंडी, डॉक्टर प्रशांत ठंडी, डॉक्टर प्रेम ठंडी, बेबी ममिका और वानी ठंडी ने।

श्रोताएं, अब सुनते हैं कार्यक्रम में अंधी फरमाइश का गीत फिल्म वक्त से महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत के रचयिता साहिर लुधियानवी तथा संगीत दिया है रवि ने। गीत की फरमाइश की है नाथना गांव पंजाब से हजिंद्र चिड्डा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने।

आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के वत्सल फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुर की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक वत्सल जरूर करें। हमारा वत्सल नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइश पर आधारित हमारे यहाँ रोमानी और यादवारा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत नहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय रात्रि के 8:15 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज फिल्म रात्रि 8:15 पर। रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स केंद्र, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8:09 रात्रि

आप सुन रहे थे वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है अरुणाचल न्यूज रील।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के फाइनल में जगह बनाई। सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 3 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम और भारतीय हॉकी में डच हॉकी कोचों की सराहना की। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी और संजना ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज बैंकॉक में सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया की जोड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एक रिपोर्ट।
2: भारत की टॉप पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के गोफ सेफेई और नूरुजीदीन को 1 घंटे और 22 मिनट तक चले मुकाबले में 19-21, 22-20, 21-16 से हरा कर 2026 सीजन के अपने पहले फाइनल का टिकट कटाया। मलेशिया जोड़ी ने दमदार आगाज किया और उतार चढ़ाव भरे पहले गेम को 21-19 से जीत लिया। वहीं दूसरा गेम और भी ज्यादा नाटकीय रहा, जहां दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन सात्विक और चिराग ने पहले गेम के मुकाबले ज्यादा आत्मविश्वास और संयम दिखाया। 20-20 से बराबर पर आने के बाद सात्विक ने एकदम सही जगह पर शॉट मारकर जरूरी पॉइंट बनाया और दूसरा गेम 22-20 से जीत लिया। इसी लय को बरकरार रखते हुए जोड़ी ने आखिरी गेम में अपना दबदबा बनाए रखा और गेम को 21-16 से जीतने के साथ ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: संजीव, 2024 में इस जोड़ी ने थाईलैंड ओपन में मैच डबल्स खिताब जीता था, उसके बाद चाइना ओपन में एक फाइनल का सफर है, उसके बाद ये फाइनल नसीब हुआ है। एक कदम की दूरी है अब खिताब से।
1: जी बिल्कुल, और जहां तक मुझे याद है कि उन्होंने यहां पिछले टूर्नामेंट में खिताब जीता था, यहां अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं और जिस तरह से खेल रहे हैं, खासतौर पे अगर आप सेमीफाइनल की बात करें, हालांकि हर एक राउंड में उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है, बट सेमीफाइनल में अगर आप देखें तो डाउन थे, पहला गेम हार चुके थे और उसके बाद वहां से वापसी करते हुए उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया और जिस तरह से, जैसे तीसरे दूसरे और तीसरे गेम की बात करें, खासतौर पे दूसरे, पहला गेम तो
0: बराबरी का रहा काफी,
1: 21-19 से हार गए, लेकिन दूसरे में 22-20 से जीते और तीसरा का स्कोर 21-16 रहा। तो मैं ये स्कोर बता के ये मतलब बताना चाह रहा हूं कि फिटनेस को लेके इनका हमेशा इशू रहा है। हाल के 1-2 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो फिटनेस की समस्या से जूझते रहे हैं दोनों, नहीं पार्टनर में अगर एक भी कोई कभी समस्या हुई तो वो दोनों जोड़ी पर, हाँ, उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जिस तरह से वो एक गेम डाउन होने के बाद वापसी करते हैं, दूसरे गेम में भी फाइट करते हुए 22-20 से जीतते हैं, तो ये बताता है कि फिटनेस का लेवल क्या है अभी और किस तरह से उन्होंने फिटनेस हासिल कर ली। खेल में तो कभी वर्ल्ड नंबर वन जोड़ी रह चुकी है, खेल में तो कभी इनके सवाल ही नहीं था कि उनका खेल डाउन है या आउट ऑफ फॉर्म है, फिटनेस का इश्यू हमेशा रहा था। बट ये जो स्कोर लाइन है, मैं बता के इसलिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जबरदस्त फिटनेस है। अब उनके सामने फाइनल में लियो कर्नांडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी है, ये इंडोनेशिया के प्लेयर हैं, दोनों थॉमस कप डबल्स में जीत चुके हैं और ओवरऑल कई खिताब जीत चुके हैं और इनके पास भी काफी अनुभव है और देखना है कि किस तरह का इस मैच में इनका खेल रहता है। दोनों की उम्र थोड़ी कम है इनसे, एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं, बट ओवरऑल जिस लय में दिख रहे हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, हम खिताब जीतने की उम्मीद कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि ये जोड़ी साल की और इस सीजन के अपने पहले फाइनल को एक अच्छे खिताब में कन्वर्ट करती हुई नजर आए। रियाद में सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अनिमेश कुजूर और मोहम्मद अफसल ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट में अपनी अपनी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते।

0: भारत ने एक रजत और दो कांस्य पदक भी अपने नाम किए।
1: सऊदी एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारतीय धावकों की रफ्तार का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अनिमेश ने पुरुषों के 200 मीटर रेस 20.77 सेकंड में पूरा करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.44 सेकंड के साथ रजत पदक अपने नाम किया। उनके साथ ही भारतीय स्प्रिंटर गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर का कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 800 मीटर रेस में 1:48.24 सेकंड के समय के साथ भारत के मोहम्मद अफसल ने देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता, जबकि प्रतियोगिता में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक पुरुषों की 4x100 मीटर रिले टीम ने जीता। भारत के लिए एक और कांस्य पदक 110 मीटर बाधा दौड़ में एम कृषिक ने 13.90 सेकंड के समय के साथ अपने नाम किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: संजीव, सभी खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है रियाद में, लेकिन एक नाम भारतीय एथलेटिक्स में थोड़ा धीरे से लेकिन अपनी रफ्तार से बहुत तेजी से सामने आ रहा है, अनिमेश कुजूर। छत्तीसगढ़ से आते हैं, 100-200 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। कितनी संभावना है इस खिलाड़ी में नजर आती है, जो कि स्प्रिंटर अब तक भारत में बीते कुछ समय से एक ब्रेक लगा हुआ था, ये खिलाड़ी आया है।
2: देखिए, ये नेशनल रिकॉर्ड इनके नाम है और रेगुलर ये क्लॉक कर रहे हैं, 10.2 है, 10.4 है, तो इस तरह से लगातार वो, हालांकि जो रिकॉर्ड है 10.18 है। अब हमें इंतजार है कि कब एक कोई भारतीय 10 सेकंड से कम में 100 मीटर दौड़े। 200 में भी इनकी टाइमिंग अच्छी है और एशियन गेम्स में हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि एशिया में चाइना के, जापान के, इवन कुछ और देशों के ऐसे एथलीट हैं जो 10 से कम दौड़ने वाले हैं, बट यहां पर वो दिन वो होता है कि वो दिन किसका अच्छा रहता है। तो मुझे ये लगता है कि कम से कम एशियन लेवल पे एक अच्छे एथलीट के तौर पे ये उभर रहे हैं। उम्र भी ज्यादा नहीं है, मेहनत भी करते हैं और लगातार ये उस टाइम को मेंटेन किए हुए हैं। अब उनके जहन में भी ये बात होगी कि किस दिन हमारा 10 सेकंड से कम टाइम निकले। फिलहाल उम्मीदें जो आप कह रहे हैं कि उनसे क्या हम उम्मीद करें, तो उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है और अगले एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में हम देखेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स का थोड़ा टफ होता है 100 मीटर 200 मीटर, बट एशियन गेम्स में मुझे लग रहा है कि वहां हमारी निगाहें रहेंगी कि वो पोडियम पे आए।
0: जी बिल्कुल, उनको पोडियम में देश देखना चाहेगा, जो कि उनके 9 सेकंड उतने ही होंगे जो नीरज चोपड़ा के लिए 90 मीटर का एक बेंचमार्क था, और पदक में बदलते हुए ये खिलाड़ी आपको आने वाले समय में नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की अपनी यात्रा के दौरान आज नीदरलैंड्स में क्रिकेट की चर्चा की और नीदरलैंड्स क्रिकेट में भारतीय समुदाय के योगदान का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी की और नीदरलैंड्स ने टी20 विश्व कप में भाग लिया और अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया।
3: अभी टी20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड्स की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नीदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। जब हम तेजा निदामनुरु और विक्रमजीत सिंह को नीदरलैंड की जर्सी में देखते हैं, या फिर जब आर्यन दत्त जैसे युवा खिलाड़ी डच क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को ट्रेनिंग देने वाले डच कोचों का भी उल्लेख किया।
3: भारत की हॉकी को और अधिक निखारने में डच कोचिज की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, इसमें कोच मरीन का अहम रोल है।
0: हॉकी की बात तो अक्सर करते हैं, लेकिन क्रिकेट में एक इमर्जिंग टीम है नीदरलैंड्स, नो डाउट। वर्ल्ड कप में जिस तरह का वो भारत और नीदरलैंड्स का मुकाबला था, भारत ने 17 रन से जीत दर्ज की थी, लेकिन अच्छा खेल और अच्छी खेल भावना नजर आई।
2: हाँ बिल्कुल, और ये जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया, जाहिर तौर पर ये जो हम देखते हैं कि नीदरलैंड्स हॉकी में जबरदस्त उनका रिकॉर्ड रहा है, पिछले कुछ 2-3 दशकों से 4 दशकों से तो नीदरलैंड्स की टीम ने हॉकी में बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, और खिलाड़ी ही नहीं बल्कि वहां से अच्छे अच्छे कोचेज निकले हैं, और उन्होंने सही कहा कि उनकी देखरेख में भारतीय टीम, उन्होंने नाम भी लिया विमेंस टीम के कोच का। और क्रिकेट की तो जो बात है, नीदरलैंड्स ऐसे लगता है कि

0: बड़ी टीम नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत कम है, वहां बहुत कम लोग हैं, बाहर से जो जाके लोग वहां बसे हैं इधर भारतीय उपमहाद्वीप के, वही खेलते हैं, वहां के भी लोकल अब खेलने लगे हैं और फाइट देती है वो टीम
1: जी।
0: तो इसकी चर्चा उन्होंने की और जाहिर तौर पर उनको इससे एक प्रेरणा मिलेगी वहां के क्रिकेट प्लेयर्स को।
1: जी बिल्कुल, और क्रिकेट की बात हुई है तो बात अब आईपीएल की भी कर लेते हैं, जहां कोलकाता में इस समय गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 14वें ओवर में 2 विकेट पर 167 रन बना लिए थे। इससे पहले लखनऊ में कल मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराकर चेन्नई की प्लेऑफ में पहुंचने की राह को थोड़ा और मुश्किल बना दिया। एक रिपोर्ट।
2: प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार 3 जीत का क्रम तोड़ दिया। लखनऊ में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 5 विकेट गंवाकर 187 रन बनाए। टीम के लिए कार्तिक शर्मा ने 42 गेंद पर सर्वाधिक 71 रन की पारी खेली थी। एलएसजी के लिए आकाश महाराज ने 3 विकेट लिए। 188 रन के लक्ष्य को मिशेल मार्श की 38 गेंद पर 90 रन की तूफानी पारी ने एलएसजी ने बेहद आसान बना दिया और टीम ने 20 गेंद शेष रहते 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। जोश इंग्लिश ने 32 गेंद पर 36 और निकोलस पूरन ने 17 गेंद पर नाबाद 32 रन बनाकर मार्श का बखूबी साथ दिया। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद सीएसके अंक तालिका में 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ 6ठे स्थान पर है, जबकि एलएसजी अंतिम और 10वें स्थान पर है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब लखनऊ इस टूर्नामेंट से एक अच्छा फेयरवेल लेके विदा होना चाहता है अगले सीजन के लिए, लेकिन इस फेयरवेल ने चेन्नई की राह थोड़ी मुश्किल कर दी।
0: हाँ बिल्कुल, चेन्नई के पास अब जो बाकी के 2 मैच बचे हैं, तो ये टीम जीतती है तो 16 अंकों तक पहुंचेगी। फिर भी देखना है कि बाकी टीमें और जो ऊपर हैं, आरसीबी है, गुजरात टाइटंस है, सनराइजर्स है, पंजाब किंग्स है, इनका प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर ये सारे अपने अपने मैचेस जीतने में सफल रहे तो फिर चेन्नई के लिए मुश्किल है। और फिलहाल जो आज का मैच अभी का चल रहा है वो भी काफी रोमांचक हो चला है, गुजरात और केकेआर के बीच।
1: जी बिल्कुल, केकेआर के लिए कहना गलत नहीं होगा, डू और डाई है कि आज अगर आप जीत नहीं दर्ज करते हैं तो इस प्रतियोगिता में आपके लिए आगे का सफर लगभग समाप्त हो जाएगा।
0: बिल्कुल, और अगर आज गुजरात की टीम जीत हासिल करती है तो मुहर लग जाएगी एक तरह से, वो 18 अंक पहुंच जाएंगे और उनके अभी 2 मैचेस बाकी हैं, तो आप मान सकते हैं कि ये टीम पहुंच जाएगी प्लेऑफ में, जबकि केकेआर का सफर खत्म हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, तो गुजरात की नजर होगी कि टेबल टॉप करे और कम से कम फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे रहते हुए अपनी टैली को समाप्त करे।
0: हाँ बिल्कुल, देखिए केकेआर के लिए तो यही है कि अगर वगर में भी उनको रहना पड़ेगा, अगर वो बाकी बच्चे में अपने मैच जीतते भी हैं तो ये गारंटी नहीं है कि वो आगे चले ही जाएंगे, बट हाँ ये है कि ये जीतने के बाद उनकी उम्मीदें बनी रहेंगी। अभी जो मैच की स्थिति है, 15वां ओवर चल रहा है, 175 रन बन गए हैं 2 विकेट पर, रघुवंशी अंकृष रघुवंशी क्रीज पर है और अगर ये रहते हैं तो अगले 5-6 ओवर में ये 225 तक टीम पहुंच सकती है। और ऐसे में देखना होगा कि गुजरात की तरफ जिनके पास एक से एक बढ़ के बैट्समैन हैं, किस तरह वो टारगेट हासिल करते हैं। बट ओवरऑल जो अब ये ईडन गार्डन पर मुझे लग रहा है कि 1 महीने के बाद ये मैच हो रहा है, लास्ट जो यहां मैच हुआ था तकरीबन उसके 1 महीने बाद यहां पर मैच चल रहा है और एक वहां जो दर्शक पहुंचे होंगे उनको एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा।
1: जी बिल्कुल, एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा, जबकि गुजरात की टीम को भी किसी भी स्कोर पे आप कम नहीं आ सकते हैं, तो उम्मीद होगी कि आने वाले समय में एक अच्छा मैच यहां से बनता हुआ नजर आएगा। और क्रिकेट के बाद बात कर लेते हैं भारोत्तोलन की। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने आज महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठा करके 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। संजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की

0: कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष।

0: से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तब तक के लिए प्रसारण सहायक श्री सांगे बोम्पा सेदिफा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री कामे यांगफो और श्री श्रीमती सुश्री शिकारिका।